0: क्वालिटी फूड्स।
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सदा सोना
2: वसीम ज्वेलर्स।
4: लोटो फ्रॉम द नेशनल लॉटरी नाउ गिव्स यू टू चांसेस टू विन विद एवरी टिकट, सो इट कुड बी यू एंड इट कुड बी यू, यू एंड देन द सेम यू अगेन, यू यू। One ticket, two chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
5: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I wouldn't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
6: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it.
7: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
1: दावत के साथ 2000 पाउंड का हॉलिडे या फिर 100 में से एक 50 पाउंड वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स जीतिए और इसी खुशी में चले आइए दावत के साथ बिग राइस वीकेंड मनाने एट SND सुपरमार्केट सोहो रोड बर्मिंगहम ऑन 27th एंड 28th ऑफ जून फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। सिर्फ इस वीकेंड पाइए अमेजिंग ऑफर्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। कॉम्पिटिशन 6 अगस्त तक चलेगा। winwithdawat.com पर एंटर कीजिए या QR कोड स्कैन कीजिए। यू नीड टू बी 18 और ओवर to enter. One entry per household. T's and C's apply. Visit winwithdawat.com. Aur yaad rakhiye, rice isn't just rice until you've tried Dawat Extra Long Basmati.
2: The people of Britain love their ice baths. They've bought loads of them. With the Barclaycard Platinum, they could also save with 0% interest for up to 24 months on purchases, which is a nice, warm feeling. What you buy is your business. Helping you pay less interest is ours. Subject to financial status, T's and C's and exclusions apply. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Representative example, 24.9% APR representative variable and 24.9% purchase rate per annum based on a £1,200 credit limit.
1: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
3: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.

0: is the number one commercial Asian radio station in the United Kingdom. Sunrise Radio, with the latest news headlines. Next. Sunrise
1: Radio. My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ki for three generations. Khanam ki, the legacy lives on.
0: Khanam ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores.
2: Looking for the perfect getaway this summer? Then feel the island energy of Mauritius. Mauritius is big enough for extraordinary adventures and small enough to do it all in one holiday. With direct flights to and from London Gatwick, it's never been easier to visit this paradise island. With your partner for a romantic getaway or with family and friends, there's something for everyone. For fantastic offers this summer, call Southall Travel on 0208 843 4444. That's 0208 843 4444. See you in Mauritius.
1: दावत के साथ 2000 पाउंड का हॉलिडे या फिर 100 में से एक 50 पाउंड वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स जीतिए और इसी खुशी में चले आइए दावत के साथ बिग राइस वीकेंड मनाने एट एसएनडी सुपरमार्केट सोहो रोड बर्मिंगहम ऑन 27th एंड 28th ऑफ जून फ्रॉम 9 एएम टू 5 पीएम. सिर्फ इस वीकेंड पाइए अमेजिंग ऑफर्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. कॉम्पिटिशन 6 अगस्त तक चलेगा. winwithdawat.com पर एंटर कीजिए या QR कोड स्कैन कीजिए. यू नीड टू बी 18 और ओवर टू एंटर. वन एंट्री per household. T's and C's apply. Visit winwithdawat.com. Aur yaad rakhiye, rice isn't just rice.

0: गली गली में फ्रॉम त्रिदेव कमिंग अवे कीप इट लॉक्ड.
1: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T&Cs apply. Hey!

आता है न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।